सूर तरंग सैसप सिंहसी अरुब ताबीरसी अमुक्तंगदी हंगनिंग बनी इचिल सिना असम सैबी सेना सैरेंब खाइदेम इमू।

ओइनाम प्रेमिला देवी ने सकनोद राधा अभिसार तबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक तबिसी थंगजम सनाल सिंह ने खोंगबा क्लेरियोनेट

0: मैं कल अपने भतीजे रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार

0: ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਸੀਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ, ਉਸਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਅਭੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਸ਼ੁ ਪਾਂਡਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੀਆਈਐਮ ਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਅਭੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਭੀ ਹੈ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਕਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸੋਮਨਾਥ ਕੁਰਮੀ।
1: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: More from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series

0: करी नुना कोई ना गरांग फिल्म नम सिहारगा तुम ना दुमले नखरी दुना
1: कैमरा की बैटरी लो गिव दु दा दुम तुम बई वानी दा मोई मु दुनु छु कबो मुरी दु कोंपा म हेपिर ए मदु हेक्सारु दि तुम नि ए अदि दिम तुम मे दना
2: ओसन से आइ ने यम न को पोलम यावी लकी पुर दि यम न से अदुग बुरखान दि यम ने इंग मशीन आइ ने यम न गलि बसे ओसा
0: नमितो खरे खरे बतक त यें कलो
2: अस
0: आ लकी पुर दि न जिंगा अदुग मसी दि ने इने को पने
3: माकु माकु नखोइन हाइनरी बदो आइ हाइगे ता अखोन लेब मफम से उम्न हौ असंग पिथल पाबी की असाब मैसाद खरदंग फाजनबे
4: हेमा नई मैम लेने नखोन चाहनब कबो पोर
3: इने पीजब गामुकना अखोदी कईजर
4: हेरा कहींसू याब नतेद अखोगीदीने कबो अफाब मुरी नतने कई फंगे पानग क्वागे यू पानी अखोदी अई चाय सिंहरुखीगे नई वरी सौगोको
2: इनने खुदे अखोद कब मैं पुरुष कदाइदगी पाना क्वासी खी पाले है
3: हे अब आ इंखोन का मई हौफम लेरी उब्रे
2: आगे
3: अचौ अचौब खासू लेरी मसीद इने की कबो पोफमने फौ मरांग कायने लेब इमुनीना कबो यामने पोइने
2: से क्वा साबदने यादी मसु फजरे
3: हेरो कुमनिंग लबदिने नसागी खर खर खलो चानिंग लबसु खलग साब तारे कैमेरा ददी यामने सेंगने सेंगने उबनी को एखोय की मिन उरीब सिदगिने कैमेरा न उबने यामने हेले सना तुमबा
2: से
3: नंग दा युंगा तालम जें जेलु नसा नोय थोलबदी फिल्म गलोय तो एखांगोय बो
2: खंग्रीदैसे फन यान सुहोनबनि साराब सुनोय साद्रब सुनो खले हयेंग मणिपुर थोलगना जिम सानब अमुक चटपतारे दना
3: तैजिउ
2: औदनिसे आइना खनबद अखुइ मणिपुर गि सेंगसे हक्सांग नोय खनबगी अचोब मरम मोय गद्रैना सुम खलिबनिसे योंगसाका
3: लुगैरोनबा
2: हवाइजार सगेम पोंबा nga थोंबा म सारगदिना हेकेनसिन
3: किबा
2: सुइल पवारका पुमांगमांगि दैसे
3: अतुदनि अदुदने अखोइना लेहुदोरिसे अफाव अफाव हेरो सिंगि पुनसिगि वारि पाओ जेकि साल होय ब्रुसली जेलि होय दिने अक्सांग कंखतना बसुपात थै हायनि
2: से सुभाइबदो अखोइ दि नोंग फादोक होटेल द थकप मंगायरे अतै द सुंगथ थकप न दिसे
3: फारे फारे फारे फारे हायेंग दिने ngann namba chakkada bani barak turen gi ayuk ki phajaba nangoda bani हिद पुरप पोट ललोलीदी पोप मरा मिंगद लोनबदबनी लोनना लखीपुर मार्केट नंगदबनी को
0: मखोई की मार्केट से नुपीसु खर मकई फम्मी हैबू खर हेन फम्मीसे योले मरा योले असामीस नुपासिंग बेंगाली नुपासिंग से लखीपुर कैथेल पोट योले मैतई नुपीसिंगने चेंपा कबुक सेन चाब फी योलीसे
3: अदूबुनी खेनब सिंगदो तसेंग तसेंग उलो मणिपुर की इमा कैथेंगा लखीपुर बजार गदि कदाई मानब यागनी अदुदी वाकिंग चटके नखोय हायेंगे सेम सानरुरो कुइरेरोय साक ताला इनेना साक लोय हायरानी को
0: फनीसे

0: मरुप चंचा कांता योरी ऐतना
1: योरी मरु वरुप याद देखो आई नरांग ने लांग निगबने अदुबो कंपनी की मैनेजर दो दिल्ली देगी लाख तने रहेगा मौन द पीने ने बस ये सांग लोचन बदल लाख पंगा मुद्रा अदो नहीं को हाउसिक पो फिल्म खा कम दोरी बा
0: मरुप याम लो पसन्द सतरी फिल्म नंबर सिनुमी निनी हूँ ये सिद्ध लोए लगने खले
1: अदुबो रंजित आई की बाबा दी दिल्ली दले ये
0: हो
1: आई हाँ ती मफ़म मसिदे सोशल वर्क तो बनी ना यूम मसिदे तोइने तोइने लाए रंजे मतांग साबु द इशु बहुत लेफ के खली है
0: अदो दी आमने पापा वानी ने मरो
1: अदो मतांगी सही द दी नुपी मसाज सिंगी स्कूल मतांग दी सागे द ना ये याम कन्न खले मरो नुपी खुदी मामा वेर कनी होजकी मतम सिदे लारिक है तभी मामा ना मचाबु करम ना मी वेन बस हेम गनी ओजा साम दगी ममा मने हेले हाइनरी बनी मसा सिंगी दमकता ममा सिंग से लाइक सोइदन हेन बताबनी मरो
0: आई कोई मरुप चंद्रकांत सी बहुत सोइदन कारे 100%
2: मरु चंद्रकांत मैं हम तो ठोक सी लाओ इने न मैं पोरे ए
1: होय होय इने यारे यारे इने इने इने बुसाक सारा ब्रो
3: ए कदाय दे इनो दा ngasi di thang jane char roi horen numit mayum changkha ga cha doimi
1: अखोई इने की दी थांग जे सुसाक सादे अदुगे एकादशी सुसादे इपुना सलम बनी ती पुना मक इने न लो इन मक लहो रे
3: आई न लाई खरमी से नंगी सरुक सुयारी बनी
1: ओ
3: नंग तमंगाई रे इने की नाक तखर खर लाग पीरी से
1: इने
3: अते इति कना सु लाग पी दरे आ फरे फरे नंग न फिन नरों दु हों दो उरो अदुगे ने इरु जतो इने न नंगी चान न बस हेम छारु रगे को
1: इने तो बिरु रनो तो बिरु रनो
3: कई गिनु
1: आई नसी दी ब्रेकफास्ट फजन चारे लखीपुर द इमानव उनदना अवा थबिग थैबोंग सु यामना सासले चाक चाद्र सु यारनी ने
3: हे अंगावा अदुन पुख थनबे यारोइ ने इने छेमु गे को
1: इने तोबिरु रनु को आइ चाक तु सारोइ दोइ नि को ngai khone maru ronjit hojik pu film numbers de da kari kari problem bulai ri ge
0: yamna di nuai de ga problem so wam lei de maru
1: kai dore
0: hai bati heroine se zogo yamata hiram de ni हेरोइन पुंग येदगा हेरोइन जॉइस हाबगि सिनमेटिक अमा याव या मसिगि दमक अवाबम ओइने मरो
1: ओ अदुदि करम तोबनि नेखो गवाती द सलगा सोंगेन ड्रामा डिविजन गि ओजादु कौशिया मखोइगि द जगोइगि सरुक सु यावै है ओजादो आइगु सु खंगनै
0: फिल्म गि दि नमिङि द नमहुद्रबदि अमुक नौना पांखत पदा याम नवान थ्वै मरो
1: ओ
0: हेरो गि दि प्रॉब्लम लैते सना तोमसे पुंग येब फजन है
1: ओ मरो आईसु लखीपुर जगोई की एकादमी में लिंगे खलम बने होगा लगली वनु पामचा नुपी मसाज सिंह से मणिपुरी जगोई तमनिंगे थबक असी यामन ना पाइकर पंगम दो बमरो
0: याम ना पंसांग सांग बस सिंदिन न तेदा मिनट अमतंग जगोई साबंगम लबदे यार बने
1: ओ ओ ओ ओ
0: अदो मरु न जगोई की ओजादु खंगने बीर बदे लाय हराउ की जगोई मतेक अमतंग तंबियो हाई सिमरो
1: दुदी आई फोन तोरोगे अदुगा हेक तो चलू रसे
3: है ngai khun hi yum da chak su matam nai na chadre aina de nangbu hotel da chak chagano na yam haib ni ko
1: ine chak charak panati ye tal charak pane haujiki matam da dine mi ayam ba hotel da loin mak tan chanari sidi
3: adu dani adu mai na hotel da chab de gi mi yam nanara bani ko
1: naroi da kisu naroi de ne adu dine ai thabam ta chalukhi ge
3: hai ma nangbu hujik da la e amu chala ge hari ro
1: koiroi ye ine thuna la ka doine ai chalukhi ge ine
3: हो चलो रो

0: लेकाशिर ले बीरी बा में तुम खुदी माग नुमा आइने तुम खुल तांडियो आइने मैयां के महुत सिंधुना लम्मसी मुंगाक सेले मैयां पुन्न माग अकी अखंग ले तना नुमा आइने तुम बियो लेकाशिर ले बीरी बा में तुम खुदी माग नुमा आइने तुम खुल तांडियो आइने मैयां के महुत सिंधुना लम्मसी मुंगाक सेले मैयां पुन्न माग
1: अहिंग से पनयाम न थेंग लबनी महामची तुम जिमाले ने ओ एखोय गि दना तना महांग न खुल पुंबगी हुरान चिंथि कया ngak तुना लेरि कया द वाजरब महाकी पुंचिनो हयिंग दि नोंग हेक गान बगा बराक तुरेन द ngा फाबा मुख चखरनि ngak तंग तुम जरबदि फनेदा फरि ऐसु ngak तंग तुम थन ब तौरके
2: बाबूनी
3: नारंग मौसम कईचा चलूरगा नो
2: नारंग मौसम चलूगना तेमने येगो वही मैं हेल्से हईखा माल हईनौने से नंगी नंग
3: नंग करी खंगे हई तो जागे लेबाक थम थम मो लौगे
2: न खुन लौबदि गदोगे
3: यादि अस एन लेबाक थम हायरि सिने थम मो बा
2: ओ अदुदि अदुदि पीर रोय आइ चलक आइ
3: हाय पीर मुने हे चखरि जिय मो
2: पीर ये
3: मामा
2: सुमी पीर रोय
3: मामा छे मामा मामा
1: हमा हईदि उ तो प मंगम मंगुरे था नोंगा लमाले नि हाय हगल लखे
4: इने इने
1: हाय मा कैनो रे बिलासिनिया
4: इने
1: आइ से याव खरा थेंग खरा माले ने नासी दि थांग जनि ना सनी पूजा लैये हाय लै खदंग सु थौरांग तौदब याद्रिबा
4: इने मखोय ngarang जवै तंब जखिबदो अमाता हलकत्रे मखोय गि सा हाप लगुमसे अदुगा ताद महामने इने दे पियो हाइदना सुमांग दंगा खरे सुथानने
1: ओ हैना मादि ओंथोन नंगन होगल अमेदा नरांग हिंग आइना तुमम दाइदा माने ले काई ngak पगि लाउबा ताकि अखोय गि लमसे होजिकान सिदि संगोन दगी सनबु मांग बने नानु कांग सु याम न मांगना रे होजिकान से मवोंग म ओनखरे अदु ngasi दि मी सु यामद्रे महामन फारक पंगा सिगा खामिना सिनबगे थोंगगे अदुगा खै चारसिको
4: होय ने इनी ना कोइदा हाउ ngakte pijai masigi lamal aina mato karmna singadoino khangdi adunga tada mahamse kaya da phakra ba mahang ne ini khoi ite natana khoi mayam gi su honari mahaga se mioi be marakta yamna tangmani
1: adu ai nga sing se thongna na ba sem saru rage ko
4: ini इने अदुदि आइसु खोंग ना सोय फाउबदंग चलुगे लबुक लमांग सिंग से येंग बदो ओंथोक ना नुंगाय खरे आइने हेक पाम जबा असिप प मफम हाय बदो असि मंगनि
3: येंगो येंगो अदो साति लम दे लोइन खो को
4: यारनि दै ने पुद्र बसु यारनि
1: हैना मामा से सोम द मुला एनि मामा कै गिनो ngasi दि याम थुन का रे इना
2: आइना सिदंगन ला पगि मरम से अनिशी
1: हाँ अनिबा
2: अहान मरम ना चंद्रकांत ने नुमिदावन फिल्म नमनी हाये अदुगिदमक्त हाइखोंग लेखोंग सिंसे सेंदोकेना लाइबा अदुगा अतोप मरम मनने बाबुनिया नरांग हिं आइगि मंगदा नंग नैबु कन्न कन्न कौरम अदुबु नसक्ति उब फंगदे कौबदु दंग ताकि

0: पिकअप थोड़क पदा मंग वो रमे
1: मंग
0: अमुक हन तुम थब सु याखिद्रे अदुदगी दी आई अदुम होग लगा ना फाव चले दना
1: आई ने नंबु कौवा अदु मंग वो रसु ताइबंग वो रसु नंग नतना आई दी कना द कौरुनी
0: होइने होइने ताइबंग द कौबदु बुदि फरे बा अदु मंग द दि कौर कनु को मंग द नंग कौबदो अदु अदु ताबदा आई आम नुंगाइते बा को
1: ऐसु नुंगाइते
0: करी
1: ऐसु मंग द नंग उई
0: करी बा आई उई बा
1: आंगांग वई नेगी मंगसु हे हे मंग ओ नंग ना आई गी मंग द वई हे अगने आई वन द पीउ यारम दे हा वई सिंग दो लेपाक द थमो हाइर बसु यादे
0: ओ
1: साउ न चकी कन्न सेन की अमु करना ना सतो उबादम फंकिरे
0: आई खोसे नंग नु वई हाइर गा ऐ के नोम निसेंगे चंद्रकांतना लफोय ग कोमला ग लयु हाइदनने आइगुन सेन पिरम मेबा अदो मयाम सी हयेंग इम्फाल से खिबद हाफ खिनबनि सु हाइ
1: अदु दि पाइ आइ सु खालि बने
0: ओ
1: मखुय मयाम लैबसे आइ याम नङै मखुय न सख खगति इचि अमुक जि होर दोइ
0: आइ खुय दि अदुम लै होब ताबने अदो नंगि बुकरि वाटके
1: हा
0: नंगि दि एउ नानु लैरि दना
1: अस
0: अदुगा खुनु सु लैरि सन मपि मचा अदगि दि
1: अदगिदि अदगिदि
0: हां
1: करी करी
0: नंग ने हे कौबग आइदि दम लाखपनि दा अदो बाबुनि आइना मुकसोना हाइरिसिनि को नंग मंगददि आइबो खक्कौ कनो को
1: अदु बुवारने मंगि वाबो कनाना खंगनि
0: खंगदबदुनि हाइरिसे खंगदब उदब पोसिङ असिना मिओय बाय खुइबो वहल्ले करम बमतमदा करम बनुमित सिगिनि हाइबसे खुइ कनाम त खंगदे अदु ओरेबसु सीनी हाइदना अदुम वाइदना
1: अदुनबो लाइक खुरमिसिनी
0: होय आइसु लाइक खुरमे इराइ खुदिंगी अलाद निजे अदुबु माने दुआ तो बिदे आइने खल्ले हिंग मंगम लिबसिमक मागी दुआ ने हाइदना
1: फरे अदु नंग वारी सारिंगे सिदा चाक थेंकी बतारे
0: ओ
1: आइ रु जरूर अगे
0: होय
1: अदु नंग सुचाक चार ग चलो
0: होइने
1: आइने उना वना सिंग दो लोइने सिजेलम बने मै थागा दव दंगाइर बने
0: ओ असोंगी दुरा
1: अदो आइ चंगा गे को
0: होय होय होय आइ जु मै था दो रगे

ही आए बा मामी अच्छी की आठ याम नले मियोई बगी पुंछी खुदिंग मक ही आए रिबंग आतनी ताईबंग इपाग असे अरुई बग ही ये मलाग लगा लान गदोरी बंग आतनी मामी से

ताबिरे कांगुजम सर्जुन सत्प जीवन कुमार ने सैरेंब मतमीशेमा आकाशवाणी इम्फाल हौजिगमुक लांथोचरी तोंगान तोंगानब मणिपुरी फिल्म इसई सिंह मथंग मथंग होना।

0: ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯇꯟ ꯔꯥꯝ ꯃꯥꯟꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯟꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯨꯀꯦ ꯗꯤꯃꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯡꯂꯦꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯠꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯥ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯔꯤꯇꯥꯏꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯔꯠꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯟꯅꯆꯦ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯌꯥꯟꯅꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯠꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯔꯖꯤꯌꯥ ꯃꯦꯂꯣꯅꯤꯒ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯏꯠꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ 2027 ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯟꯅꯈꯤ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯖꯣꯔꯖꯤꯌꯥ ꯃꯦꯂꯣꯅꯤꯗ ꯁꯤꯔꯨꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯍꯛꯄ ꯃꯨꯒꯥꯒꯤ ꯏꯟꯅꯐꯤ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯠꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯔꯖꯤꯌꯥ ꯃꯦꯂꯣꯅꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯠꯂꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯔꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है
0: नोंगचो बेंगोल के साउथ 24 परगना जिला की फालता विधानसभा केंद्र दंगसी अमुखन वोथा दनरी अयुक पुंग तरे तगी वोथा दबहु के बदु निमिदां पुंग तरे फाव वोथा दनगनी पनबयाय एप्रिल कुनमापन द वोथा दनखी बा फालता विधानसभा केंद्र द अरानब थोंग के असथकी हायरदुना ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯇꯔꯦꯠꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯖꯍꯦꯡꯒꯤꯔ ꯈꯥꯟꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯅ ꯕꯦꯂꯣꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯗꯦꯕꯥꯡꯁꯨ ꯄꯥꯟꯗꯥ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯕꯗꯨꯔ ꯔꯖꯥꯛ ꯃꯣꯂꯥ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝꯒꯤ ꯁꯝꯚꯨꯅꯥꯠ ꯀꯨꯔꯃꯤ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤ ꯖꯣꯁꯦꯞ ꯕꯤꯖꯦꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯂꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯅꯥꯊꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯏꯪ 1996ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯗꯁ꯭ꯌꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯙꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯃꯦꯇꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯇꯥꯏꯇꯥꯟꯁꯀ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯤꯡꯁꯀ ꯑꯍꯃꯦꯗꯕꯥꯗꯀꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ ꯃꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 30:30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯜꯀꯥꯇꯥꯒꯤ ꯏꯗꯦꯟ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯇ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯁꯇ ꯀꯣꯜꯀꯥꯇꯥ ꯅꯥꯏꯠ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯄꯨ ꯋꯤꯀꯦꯟ 4 ꯊꯣꯏꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯇꯟ ꯔꯥꯝ ꯃꯥꯟꯖꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
2: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯟ ꯁꯒꯥꯏ ꯖꯥꯝꯕ ꯕꯂꯥꯔꯥꯝ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯖꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯆꯅꯝꯕꯝ ꯔꯤꯡꯒꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯟ ꯁꯒꯥꯏ ꯖꯥꯝꯕ ꯕꯂꯥꯔꯥꯝ ꯇꯔꯥꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ

0: गोविंद बू नहाने साब लराम की पुंसी असीबू करी की असु वाहन बीरी बन इमो बेम सीज खेलेंद्र सोरेन सुप न तंगी था निपान की पिकली मजा निपा मथनम लगा संसार से था दो तुन सतक्रे मसी पुम बसीबु यंग हेरी बतबक इसाब लराम ममा याउदना पिकली मसा सिबु नौ योग तुना करम न पुंसी लेन गदौरी बनो खलु बता हन के मतम मुरक लबा ममा मपाई खोइना करम न येंग न लेब नम कथकि
1: मालिका आ इशुरी तुंखरबरा खंगरे नोंग द ममा गि लिरासे अंगक पनिन हे कनानन असुन थोलगनी हाइबदे तम ngambode do लैबाकी थवाई यामने इशा बलाराम दुसुने उठो न वाजर बनिन है मसागी दमक तबु खन गेदरा शिज नमंगो न सिनबीरी ब थबक सिंगु पांथो न बहो न गतना उठो न वा वा बि ओइर मिन है
0: मुहि पागु इसु से नसाई मकै निगा याम तौरम बन हौसि ततुं खी बदंगाई दिबनि
1: आ कदा कदा इसु दि कदा ओ हो कयाद नुंगाई तुम जरी बनो नसे ए आगो मामा इसी दी नंग छंगांग न पोंग खो लेना ए कांग या म्यूजिक पीर मालेन हे इही मामा की खोमलांग थकिय दना मामा की मतम बाग ता ओइने जगद ब मतम मुसीदा हे नोंग दम ब कहु बला नहा था मामा मुशाबू हे काई में हलीदा
0: मुहि पाबू हौजिक बुआ खुन कनाद बुआ मुक्ताइन रुखिनी सही न लुम सिलगल खुन पिकली सूगीदम खनबद सी सिंगमद संग सी संगमद वान पुंसी लेन बतारब को
1: मगलो नुंगदम मादिने लोइन उबीरीबनी लोइन खंगीरीबनी मालिका आवा बवा कल था तो लाइन तंबम शो हो इधर न मरी रम मगन है ना कौन है मालिका आई दी नंगों ने वापम मम तंग हो दो के न कलीन है
0: करी करम वापम उइवी रबनु
1: लिंगो मनाओ इबुंगो जोई मान चैते न नर सिंह है सेनापति की ममो लेकिन द्रवी इमो इबे मा कलेंडर सोरी की मनाओ इबे मा तोनु सना तो
0: तोनु सना
1: मिनु हिएंग बिदुना इसा बलराम गि दमक्ता इमो वो जगे हाइदना अमुतंग शिबिर कुराइदना येंग सिरन है
0: सुमिना सुमिना मोय पापु आइदि नहान मखै दि निंगु नि सिंगलु दि इसु गि दम येंग दुना अमुतंग जान बिरक परा येंग बा
1: ครีสกายเดนะอะดุนิครีสกายเดนะมะปะปูอะดุนิอินคาลิปเซอะดุนิมาลิกาทักชุมนะตอรชินังเนปันทะดะนะหะเยงะเซมะสนาโกนุงเดซะละกาอัมตังดีนังยาวีระพราไฮดะนะเมไลบุกเยงูโรดออะอะอะดุติมุยปะปูนะตักปิบะกิมะตุงอินนะหะเยงเซสรีโกเบนเดควรัมเจระกาอิบุงโกกีนิรมัล हैरांग लेरांग पुजरगा एक दत्सा जरूर रखे इसुगी तमक येंग लगने अमुक तदी हाई जरूर रखे मुई पाबू अदु दिनांग शोई भी आदरे को चलो चलो चलो मंगोलो जरूर

0: श्रीयुक्त सिंगले नोंग्रेन खोम्ब गंभीर सिंहा महाराज कियामपोक लमजाओ बुमाले सिंह अवाद अमुक पिथोखिबदगी थमुई लाइमन ओइदुना एखोई पुमनमक पुथादोक पीरमलबद लमदम मसे मिकप मिराव खोल तननिनकी अमरोमदन ऐग लोइन जरमबी खेलेंद्र छोरीन मनु मतम शादन नोंगा किबद ममा लेत्रबाई इशागी मतव येंग बंगमददुन कगमाउनन लेरमलब ऐगी पुनसीबु पुक्सेल चाउबी मिनुंग सी खंगबी तोनु सीजन इकोक थक तक जाउरब पोटलम मथांग थविकी अदुगा हेन नुंगाइरिब अमना सही मरी सुद्रिब मजाई बुंगो छनाहल नौजिंगले नोंग्रेन खोमब चंद्र कीर्ति इको सी नर सिंहाना मयामुंग सनख्या नंगान थोई बिरंब छना फंबाल थक्त थांगत पीदुना मैत्रवा किमिंग थौनी हाइन लाउथोक पिक लेपाक मियाम पुंबन मणिपुर गिनिंग थौ फंबाल ममांग द तारब फावद कलखिदब नरसिंहानी हाइन सोनक
1: ममागी बुंगो ताबिरिबरा
0: करी हाइनिंग मगे तोनु सिजा
1: सना को नुंगलेंग बिखिदबसु कुइरम लगनि
0: पाउलाक लबनि हंदक सी मतम खर सांग युम द लेदुना लनाय गी ओइब थब खर लोय सिनिंग बनी अदुबु या रोय दवरी निसना
1: युम गी ओइब थबक सिंग दी लेपा की होनरि गई दा पुम हो होर बनी
0: खंग रे द सना सगाय जाम बलराम गी पुन सी एसी शालान मरक्त चौरक पनीना शालान मरक्त अदमक लोय खरगदरा हाइबगी सिंगनव कन्न पोकलक
1: अदुगी बुदी ममाग इबुंगोगी थबक असिदी इरैपाक इरमदमबु कंजनबा लैपाक निंथौबु योकपिबा थबक निदो आ मी अमन हेक त ओइनिंगी हाइदुना महुत सिनबा याबनति हाइजरिबा
0: अशेंग बदि सना अशेंग बदि
1: अदो हंदक पाबुंग सनख्या नरसिंहाना जुब्राज ओइदुना निंथौगी महुत मरेंग सिनदुना लैपाक ngakलिङै कलक खमबनब फत्तब खरना लेपाक से मना मनिल नाय हनब होनब याउरब्रा हाइबगि सिंगनब लैरेदो ममाक इबु
0: मदो सोइद्रबनि औज थेंखां कया यामलबनि अतुप मितुप नत्तब हाक्त ओइबना मया इद लेप ननब होनबद बलराम ऐन कयागि मतिक वाजकिबा
1: अदुबु मिरे पाक सोखनब लाल ओइरबदि खरसु फगदब ममाक इबु लेपाक मनुंगी तांगबल फंबाल लाल सिदा लेपाक से मनिंग हेक हेक खंदुन सली हाइबसे ननाय नुबिना पिकलिंगै दगि खंगदुना थेंगना दुना तलाक लब वाफम निदो
0: मसिदनि नि लैमा अइना श्रीधाम वृंदावन द लाइनिंग दुन लेखरगे हाइना हेक हेक खलक लिबस
1: मांगले मांगले मांगले ममाग इबुंगो अदुमना तौरबदि मांगले
0: तुनु सिजा

0: ສັງຫຼາຍລະບສັງຍວາຣີທໍລະມຊິດາເຣດິໂອດຣາມາອີບາມໄຣງທິມອີນາອຸຕາບີດີອາກາສວານີບາລຫໍຊີເດລີດະກຣີເລດາດໍເພຫະສະມາສາຕາບຸຟັງບີຣະກະນີງາຍັກຈັງງາຍມິນະຊີ
1: पहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
4: It is ironic that Pakistan, with its long time,
5: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
6: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
7: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
6: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिंस।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
7: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
5: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में

वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शैल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है इससे पहले आज कैबिनेट में

नमस्कार फौजी भाइयों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए प्रसारित हमारा दैनिक कार्यक्रम।

फौज भाई, आज गुरुवार है और हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं संगीतकार महेश किशोर के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म सनम बेवफा से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार है सावन कुमार।

फौजभाई अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के बोल को फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का। इस गीत में आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौरवाल और पंकज उदास ने, संगीत से सवारा है आनंद मिलन ने।

फौजी भाई, अभी आपने सुना गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म हीना से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फौजी भाई, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कांगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म बागी से ये गीत। बोल समीर के हैं और संगीत आनंद मिलन का।

फौजुभा इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

फौज के थोरम ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हौजी संदोकसरी सिंगलोर की सैरो अहानब ताबीरसी डब्ल्यू एल बी समी कामुन सकप मोनसांग मतम से

programs ta te le hi ni bai grassroot hi velo lu ju mai so new ko a te ra va so ta pe ni pa we jo ko ra ni akai ju so lai ma sho hi jo te te hi jo do mai velo mai so new za pa do bu khai ti ju to ra bu ju so lai so do new sho sho lo ha to ha ke jo le ke ra ra kai so wa bangalore hi ni bu ju lo wi ni lo na round der me ni so ju adza how pare ti ju bu ra bu ta kho we ahai je so new imphal hi bu ju na kho new आर जोसेफ ने सोजु इनी मारे टीजु पिराप टखो ए अस जेसो ने हुमाकिन बिजु पावइनु केस शिह ने सोजु लो अलहि रखाइते टीजु पिराप टखो ए अदाई जेसो ने सनापति हि बिजु हैप्पी सन ने एलडी विद दैट यू अलापि वि बि ने सोजु आ हैव वी ए टीजु पिराप टखो ए अखाइसो ने इंफाल हि बिजु वेवइनु वी शो से अलापि वि बि ने सोजु अमाजा टीजु पिराप टखो ए लोहे तो है शोशो के जो लिखे

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी निमिदांग पुंग तरह मखाई तारे मणिपुरी पाउ ताबीरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल आर के गोरानी ने पाउ पाजरी अहमद मरोब पाउ सिक्यूरीटी फोर्स इम्फाल वेस्ट जिला की लमदेंद कुसु कुलाई फागतले फाजिनगीबा नगागी मियोय तरुक अथुबा मतम दा टेक दा काइदन थादोरनबा राइजो आसिगी तोंगान तोंगान फमसिंगदा वाकत खोंजों जोंसिनरी राइजो आसिगी तोंगान तोंगान जिलासिंगदा जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले थोरम पंगथोखरे हानेगी प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेखिदेबगी कुंथ्रा मंगासुवा पालन थोरम बोंगासी लैबाक आसिना एंटी टेरोरिज्म डे हाइना पंगथोखनरी अमसुंग केन हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर एन एवोला लैनाना नाबा लैबाकसिनगी लाकपा पेसेंजर सिंगदा अखन्नब सेसिल थोरम लखोनबा एडवाइजरी थोखरे सिक्यूरीटी फोर्स की लाख नोमी योन की थब इम्फाल वेस्ट जिला की लमसा एरिया चथरी है पाव फंगी मणिपुर पुलिस ने लमदेंद ऑपरेशन चथखरे ऑपरेशन अद लालोलुप कादर अनी खुलाई कोने फागत की हिरम असी का मरी लेने इम्फाल वेस्ट जिला की एस पी ऑफिस पांगोखीबा पागी मिफम जिला एस पी खेत्री मयू शिव कांतन है मफम अद खुलाई लालौब फानबगीदम चंशीलब लालोलुप कादर से सिक्यूरीटी फोर्स तम नोमे कापसिल सिक्यूरीटी फोर्स ने हंद्र नोमे काप की तुंग नोमे काप अद चेनब कादर अनेम फागत की मकोना हाईदरपी खुशु खुलाई योनबगीदम लापनी मसीद ममांग सिक्यूरीटी फोर्स लाख नोमी नुई मरू योनबद हक्तना चेने हाइना मसान मराल जाजी थोद सिक्यूरीटी फोर्स की कांगून लमदेंद लालोलुप केमता थीब हम की थब चथी तोान तोान नोमी कुंथ्रा निपन यौन अत लाद सिजनब खुशु खुलाई फागत की एस पी है
2: जगह सवाई सिक्यूरीटी फोर्स लुटेशन योनगनी पावी मणिपुर पुलिस की टीम मफम स्पेशल ऑपरेशन ऑपरेशन मई अनीक फाय नकनक की नई काप जाऊ फारे फाइव मई मरी योन लेप पाबी का
1: अमरोम असम राइफल्स मणिपुर पुलिस बी डी टीम इ डी दो की अपन कांगबू अंग तेनोपल जिला की टी बोंगमोल विलेज की बॉर्डर पिलर नंबर हमद्रा निथोद हमद्रा हमद चथब ऑपरेशन एस एल आर राइफल मैगजीन यौवा 9mm पिस्टोल रेडियो सेट मरी आई डी मरी यौन अत पोलम क्या फागत की फागल आई डी सिक्यूरीटी फोर्स नाम यौदन पोखा हेंखरे फाजिनगीबा नगागी मियोय तरुक अथुबा मतम दा टेक दा काइदन थादोरकदबनि हाइदुना अंगासिसु राइजो आसिगी तोंगान तोंगान फमसिंगदा खोंजों जोंसिनखि बिष्णुपुर अकोइबा अपुनबा लुफ अमदि कोकोमिने सिन्दुनांगासि बिष्णुपुर बाजारदा रोमै नगा लुफुआम बिष्णुपुरगी मेरा पाइबिसिंग अमदि ताइपै लोंगलियनगी मियानो वकत पिफम फमखि जोइन ट्राइब काउंसिल मणिपुर ने सिन्दुन तमिलनाडु हेडक्वार्टर्स ता चुमियांग रेली एम सेटखि रेली एदु मिनिस्ट्री देमदि हौदुना जदोनंग पाक फाव सेटखि रेली एदुदा फाजिनगीबा नगा तरुक अथुबा थादोकदबनि हाइना खोलाउ लाउखि फाजिनगीबा नगा सिंग अथुबा थादोकदबनि हाइदुना तामै हेडक्वार्टर्स सुंगासी मियामगी रेली एम सेटखि इनपुइ रोंमै जेमी अमदि लियांगमै अपुनबे लुप ओइरिबा जोइन ट्राइब काउंसिल मणिपुरगी मियांग मखादे लियांगमै सिभिल अर्गनाइजेसन सेनु चांगसिनगीबा खोंजों अदुदा जौजां टेक्ता नगा मिसम हातखिबा यानिंगदे फाजिनगीबा नगा सिंग टेक्ता काइदना थादोकदबनि हाइबनि सिंगबा खोलाउ कया लाउखि खोंजों अदुगी सरुक

ताबिरीबसि आकाश बानी फल दगिनी हौजी ताबिरीबसिंग दा खंगनजाबा मा आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की खुथांग दा फॉर्म थाजिन बिखी बसिंग दा खंगनजरी मदुदी बी दगी बी हाई ग्रेड कानानबगी ऑडिशन लागलीबा जून की तांग निपाल दगी हौजरगनी लागलीबा मे की तांग कुनगमंगा दगी कुनगमापन फाउबगी मनुंग दा इंडियन म्यूजिक सेक्शन दगी अयुक की पुंग तरा माथुई दगी नुंथिल की पुंग मरी फाउबगी मनुंग दा एमिट कार्ड लोबिरनबा खंगनजरी निंसिंग जब लोइजरी हौजिक पुंफम अदोंगिदमक पुजरगली तोंगान तोंगानबा मानबा इसै मणिपुरी फिल्म इसैदगी लखोचबनी तामिनासि आहानबा लखोचरीबा इसै अहिबम श्यामगी खोंथोकता बंकज शर्मना सैरेंबा अहिबम श्याम सिंह मसामकना सैरांग सैसी दाबीसी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आज मैं हूं आज आपके साथ आपका हम सफर शमीम खान। दोस्तों आज हम साथ निकल पड़े हैं उस दौर की सैर पर जब गीत सुने नहीं बल्कि महसूस किए जाते थे, वो दौर जब रेडियो की आवाज पूरे घर का हिस्सा हुआ करती थी। शाम की चाय, बरामदे की ठंडी हवा और कहीं दूर बसता हुआ रेडियो पर एक मीठा सा गीत। जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा कोई रेडियो हुआ करता था? जब सुबह गीत बजते थे तो पूरे घर का माहौल बदल जाता था। अगर हाँ तो समझ लीजिए आज की ये महफिल बिल्कुल आपके लिए है और उन सभी के लिए है जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं या अभी रेडियो सुन रहे हैं। तो चलिए यादों की इस रेलगाड़ी को रवाना करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जो मोहब्बत की मासूमियत को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ बयां कर रहा है। उस गीत को आवाज दी है इस उदास ने और फिल्म है स्वामी।

सच कहूं दोस्तों, तो कुछ गीतों में एक अजीब सी जादूगरी होती है। बरसों बाद भी सुनो तो वही एहसास, वही धड़कन वापस लौट आती है। जरा याद कीजिए उस गीत को। कार्यक्रम का अगला गीत भी कुछ वैसा ही आपको महसूस करने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव

नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका हम सफर शमीम खान। दोस्तों, जिंदगी कभी मीठी, कभी शरारती, तो कभी थोड़ी सी भावुक, लेकिन एक बात तय है कि इसे खुलकर जीना चाहिए। तो आइए मुस्कुराइए जरा और गुनगुनाइए इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

वाह, क्या कमाल की ऊर्जा थी इस गीत में। सुनते ही लगता है जैसे दिल कह रहा हो, चलो भाई थोड़ा सा मुस्कुरा लिया जाए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी पर एक पुराना हिंदी गीत फिट बैठता हो तो वो कौन सा होगा? कभी फुर्सत में इस सवाल का जवाब खुद को जरूर दीजिएगा। बड़ा दिलचस्प एहसास होता है। और अब थोड़ा सा अपनापन। ये अगला गीत उन एहसासों का साथी है जिन्हें शब्दों में कहना थोड़ा सा आसान नहीं होता, लेकिन हमारे गीतकार ने उन्हें शब्दों में पिरोकर और संगीत से सजाकर हमारे सामने यूं पेश कर दिया है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, चाहे पास हों या दूर, दिल के बहुत करीब होते हैं। और जब उनकी याद आती है तो कोई गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। तो चलिए, यादों की उसी नरम धूप में चलते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और समाचारों के उस पार कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हो जाएगा आपका ये दोस्त शमीम खान। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और

0: इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त आपका हमसफर शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से नगमे के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है शक्ति।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और मुझे दीजिए इजाजत। अपनों और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली

0: ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है पराया धन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो तारे गिनते हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कारवां, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4:00

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कटी पतंग, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

शाम जब धीरे धीरे ढलती है तो सिर्फ सूरज नहीं जाता, हमारे भीतर की हलचल भी कहीं ना कहीं ठहरने लग जाती है। और इसी ठहरते हुए पल में हम महसूस करते हैं कि शायद हम खुद से बहुत दूर आ चुके हैं और अकेलापन हमें खलने लग जाता है। पर कभी सोचा है आपने कि वही अकेलापन होता है जो उस वक्त हमें खुद के करीब लाता है, खुद से मिलने का मौका देता है और यादें, रिश्ते, जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं सब एक एक करके सामने आने लग जाती हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे मन ने कोई पुराना संदूक खोल दिया हो और जिसमें से एक एक करके पुरानी चीजें पुरानी यादों के साथ बाहर आ रही हो। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है जाने अनजाने, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये जो रात होती है ना, ये रात कभी अचानक नहीं आती, वो दिन की हथेलियों से फिसलकर उतरती चली जाती है, जैसे कोई अधूरी बात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और वैसे ही जीवन भी बिना कहे बिना समझे धीरे धीरे बदलता रहता है। और रात रात हमारे भीतर की हर उस राह से गुजरती है जिसे हम बरसों तक देख नहीं पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक अलग आकाश होता है, एक अलग दुनिया होती है, और हर आकाश के अंदर कुछ अनकहे तारे होते हैं जिनसे हम बहुत बार बातें करना भूल जाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मन मंदिर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

वक्त आ चला है, आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर, कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said that the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की एक खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कल आज और कल, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

कहते हैं कि यादें कहीं जाती नहीं, वे बस अपना स्वर बदल देती हैं। कभी वे मुस्कुराहट बनकर आती हैं, तो कभी कभी हल्की सी चुभन साथ ले आती हैं। पर सच ये है कि ये यादें ही हैं जो हमें हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, और जो भीतर कहीं ठहर गया वो हमें थोड़ा और गहरा कर गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है कुमार शानू और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सलामी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत

माने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, वो शब्दों से नहीं चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए जरूरत होती है एहसास की। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है और वहीं रिश्ते एहसास के साथ सांस लेते हैं। ये जो रात होती है ना, ये हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाती है। रात हमें सिखाती है कि किसी को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी होता है। क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है, अगर वो दूर है तो भी करीब महसूस होता रहता है। और जो दिल से जुड़े लोग नहीं होते हैं, वो आपके कितने भी करीब हों, उनसे आपको दूरी महसूस होती है। रात सीखने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है आराधना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मुकेश की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has emphasized that productivity today extends beyond efficiency to include resilience, innovation, and inclusive growth. Addressing the inaugural session of 68th session of the governing body meeting of the Asian Productivity Organization, APO, in New Delhi yesterday, Mr. Goyal highlighted that India was honored to contribute during a transformative phase for the APO, where technology, sustainability, and changing global dynamics were reshaped.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूं।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन, तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो। जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो, मेरे पास चले आओ, बैठो और फिर बात करो। जो आँख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, जो आँख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, उस खामोश सी हलचल को भी तुम मेरे साथ करो, तुम मेरे साथ करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, सीधे सीधे बात करो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम है संगम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी आना, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है अंदाज़।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद सुरभि होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: The 8th India-France Maritime Cooperation Dialogue was held in Paris on Wednesday. It was co-chaired by Deputy National Security Advisor in National Security Council Secretariat, Pawan Kapoor, and Director General for International Relations and Strategy, Ministry for the Armed Forces of France, Guillaume Olegnia, and Director for Strategic Affairs, Security and Disarmament at the Ministry of Europe and Foreign Affairs, Mrs. Clary Rollin. The discussions focused on their shared commitment to strengthening operational cooperation for countering illicit maritime activities, including piracy and armed robbery, maritime terrorism, drug trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, as well as other hybrid threats. In a major development in the NEET paper leak case, a pediatrician from Latur, Dr. Manoj Shirure, has reportedly been taken into custody by the CBI. According to sources, investigating agencies suspect that Dr. Shirure allegedly purchased the NEET examination question paper for his daughter. A few days ago, CBI officials had visited his hospital in Latur and conducted an extensive inquiry. The Calcutta High Court has set up a special investigation team to probe the R.G. Kerr Medical College and Hospital rape murder case. The three-member SIT will be led by the Central Bureau of Investigation's Joint Director for the Eastern Zone. The court has asked the team to file its report by June 25th. The court's decision follows repeated concerns from the victim's family, alleging tampering of evidence and suppression of facts. Delhi government has announced a major initiative to strengthen water conservation in the national capital, with rainwater harvesting systems to be revived and made functional in 75 government schools before the onset of the monsoon. Delhi CM Rekha Gupta said that the move is expected to generate an annual rainwater harvesting capacity of nearly 50 crore litres. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and coastal Andhra Pradesh. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस ठहरी हुई खामोशी भरी रात में, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में।

मैं हूं सुरभि आपके साथ। रात की अपनी एक अलग जबान होती है, कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ आधी अधूरी बातें और कुछ ऐसे एहसास जो दिन की रोशनी में अक्सर छुप जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कभी शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप दिल की गहराई में उतरती है, कभी किसी गीत की तरह तो कभी किसी की याद की तरह। तो चलिए किसी की यादों में उतरते हैं गीत सुनते हुए, उन सदाबहार नगमों रोमांटिक गीतों के सफर पर जो दिल को सुकून देंगे और मुस्कुराने की वजह भी देंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और अपनापन भी है। फिल्म है ब्लैकमेल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और चलिए सुनते हैं अगला गाना नाइट इन लंदन फिल्म से रफी साहब की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, एक ऐसा गीत जो बिना कम शब्दों के दिल की पूरी बात कह जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि पुराने दौर की मोहब्बत कितनी सलीकेदार हुआ करती थी, ना लंबी बातें ना दिखावा, बस एक नज़र एक मुस्कान और दिल की बात इशारों में समझ ली जाती थी। जी हाँ, शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी जबान खामोशी ही होती है, जहाँ आंखें बोलती हैं और दिल सुनता है। अच्छा, इस गीत से जुड़ा एक और दिलचस्प वाक्या ये है कि ये गीत शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। ये गीत कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियों पर शूट किया गया। उस दौर में कश्मीर को हिंदी फिल्मों का स्वर्ग कहा जाता था और इस फिल्म ने उसकी खूबसूरती को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी धुनें और उन धुनों में एक अलग ही चंचलता और नरमी महसूस की जाती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए इशारों इशारों में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

रात थोड़ी और गहरी हो चली है और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं दिल की, तो याद आता है वो प्यार जिसकी शुरुआत

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी बारिश, कभी चांदनी और कभी कोई गीत, प्यार की याद दिलाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद इंतज़ार है, जहां हर छोटी चीज़ किसी की याद बन जाती है। और चलिए अब ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें अपनापन है, ठहराव है और बहुत सारी नरमी है। फिल्म है घर, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

जहां दो लोग एक दूसरे को बदलते नहीं बल्कि समझने लगते हैं। और चलिए चलते चलते सुनते हैं प्यार की मीठी धड़कनों जैसे इस गीत को।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई।

0: थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच आठवां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के ही चेन्नई प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: The 8th India-France Maritime Cooperation Dialogue was held in Paris on Wednesday. It was co-chaired by Deputy National Security Advisor in National Security Council Secretariat, Pawan Kapoor, and Director General for International Relations and Strategy, Ministry for the Armed Forces of France, Guillaume Olagnier, and Director for Strategic Affairs, Security and Disarmament at the Ministry of Europe and Foreign Affairs, Mrs. Claire Rollin. The discussions focused on their shared commitment to strengthening operational cooperation for countering illicit maritime activities, including piracy and armed robbery, maritime terrorism, drug trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, as well as other hybrid threats. In a major development in the NEET paper leak case, a pediatrician from Latur, Dr. Manoj Shirure, has reportedly been taken into custody by the Central Bureau of Investigation. According to sources, investigating agencies suspect that Dr. Shirure allegedly purchased the NEET examination question paper for his daughter. A few days ago, CBI officials had visited his hospital in Latur and conducted an extensive inquiry. The Calcutta High Court has set up a special investigation team to probe the R.G. Kerr Medical College and Hospital rape murder case. The three-member SIT will be led by the Central Bureau of Investigation's Joint Director for the Eastern Zone. The court has asked the team to file its report by June 25th. The court's decision follows repeated concerns from the victim's family, alleging tampering of evidence and suppression of facts. Delhi government has announced a major initiative to strengthen water conservation in the national capital, with rainwater harvesting systems to be revived and made functional in 75 government schools before the onset of the monsoon. Delhi CM Rekha Gupta said that the move is expected to generate an annual rainwater harvesting capacity of nearly 50 crore litres. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and coastal Andhra Pradesh. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी में अब धीरे धीरे सुबह की हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे घुलने वाली है, घुलने लगी है। हवा में एक ठंडक है, एक ठहराव है, और इसी सुकून भरे पल में मैं हूँ सुरभि आपके साथ। जी हाँ, बातें करेंगे कुछ दिल की और कुछ गीत सुनाए जाएंगे, सुने जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। तो चलिए आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। फिल्म है मेरे जीवन साथी।

और ये दिल चाहता है कि शोर ना हो, बस थोड़ी सी खामोशी रहे, थोड़ी सी हवा और कुछ पुराने पुरानी यादें, खूबसूरत एहसास और कुछ गीत बस दिल में रहें। और कभी कभी हम सब के मन के भीतर एक ऐसा कोना होता है जो सिर्फ सुकून ढूंढता है, फुर्सत के पल ढूंढता है। तो चलिए हम और आप इसी फुर्सत के पल को ढूंढते हैं और

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और अगर बात करें सुबह की, तो ये सिर्फ खामोशी नहीं लाती बल्कि एक हल्की सी शरारत भी साथ लाती है। जैसे ठंडी हवा का यूं अचानक गालों को छू कर जाना, या फिर किसी की पुरानी याद में उसका मुस्कुरा देना। काफ़ी कुछ ऐसा है जो यादों में बसा होता है। तो इसी मीठी मुस्कान के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है ऊंचे लोग।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये सुबह हमें शायद यही याद दिलाने को आती है कि हर दिन नया दिन है और हर एक नई कोशिश भी आप हर नई सुबह के साथ कर सकते हैं, करते हैं। और अगर मन थोड़ा सा थका हुआ हो तो शायद ये गीत हमको और आपको एक छोटी सी हिम्मत जरूर दे जाता है।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जीवन चलने का नाम है और ये विचार हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंसान को हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और अच्छे दिन हमें खुशियों का महत्व समझाते हैं। रास्तों में कितनी भी बाधाएं आए, उनसे घबराने की बजाय अगर हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन की इस यात्रा को एक नए अनुभव के साथ कुछ नया सिखाते हुए हम सकारात्मक सोच के साथ सच्चे अर्थों में जी सकते हैं।